इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी.
1: When you can't get enough of the classics, switch to Sunrise Retro. Wall-to-wall retro Asian hits, 24 hours a day, 7 days a week. Sunrise Retro, London's retro Asian mix. Available on DAB in London, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com. Lord,

जो कभी ना ढले चाहे तो आजमा। चांद मेरा दिल फहीम अब्दुल्ला विद द टाइटल ट्रैक सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर। Don't miss South Hole Travel special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southholetravel.co.uk today. Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya.

0: कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है। बेहद खूबसूरत ये गाना, टेकन फ्रॉम अ ब्यूटिफुल फिल्म। यामी गौतम, इमरान हाशमी इन द लीड। इफ यू सीन दिस लेट मी नो। 07925-702-72 द नंबर टू व्हाट्सएप मी ऑन। सनराइज रेडियो पर इस घंटे का आपकी पसंद, दैट्स व्हाट दिस वाज।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
0: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Powered by Star Tours.

for the movie. I do want to point out that I think the person who popularized this song first, some years ago, maybe even over a decade ago, was the late great Nusrat Fateh Ali Khan sahab, right? Madhur Sharma ki awaaz mein is gaane ka ek version aur hai. मतलब ये मिर्जापुर द मूवी का जो वर्जन आपको सुनवाऊंगी ना, द लिरिक्स हैव बीन चेंज्ड, दे हैव बीन टेंपर्ड विद, बट देयर इज अनदर वर्जन इन मधुर शर्मा'स वॉइस व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, एंड आई रिमेंबर दैट, यू नो व्हाई, बिकॉज बैक इन द डे व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द जिम रिलीजियसली ऑलमोस्ट 5 days a week, दैट वर्जन मधुर शर्मा की आवाज में, दैट वर्जन लूप्ड 10 times वॉज माई 5K रन ऑन द ट्रेडमिल. वो भी क्या दिन थे. अब तो ट्रेडमिल पे चढ़ूंगी ना, तो ट्रेडमिल विल प्रोबेबली गिव मी अ मैसेज सेइंग वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम. टेरिबल.

0: टेकन फ्रॉम द फिल्म हम है राही प्यार के। कुमार सानू, अलका याग्निक, घूंघट की आड़ से दिलबर का। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 16th ऑफ सितंबर की सुबह शबनम साही के साथ। नाउ माय हिट ऑफ द ईयर इज वेरी क्रूशियल टू आवर 90s स्टोरी, टू व्हाट समीर अंजान सेड अबाउट कंटेम्पररी म्यूजिक। We understand where he's coming from. Many of us completely agree with a lot of what he has said. But is it fair to dismiss the present generation completely and say, इनको तो कुछ नहीं पता, ये तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते? मुझे लगता है ये गलती जो है ना वो हर जनरेशन करता है। Every generation feels कि हमारे टाइम में जो होता था ना, हमने जो किया था ना वही बेस्ट है। मैं अपने जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं नहीं absolutely not। मेरा जनरेशन तो जानता है कि वी आर द बेस्ट। But the ones before and after me, sometimes, you know, they labor under this misapprehension that perhaps they were the best and everything else is rubbish. But just to prove to, I suppose, anybody else who is completely in agreement with what Samir Anjan said, I'm playing you a song from not too long ago. You tell me what you think about this.
1: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
0: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 7:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Ready to turn up the volume? I hope you are.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: What is it? The greatest Asian radio station in the
1: world. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूसडे टू संडे।
2: Mira's Bar and Pure Vegetarian Restaurant. Mira's, for family and friends in that perfect ambiance. With mouth-watering Indo-Chinese, South Indian and clay oven a la carte dishes. Mira's Royal Thali will have you licking your fingers. Open 6 days from midday to 11 p.m. with live Bollywood night every Sunday from 6